0: Meal Makers connects people who love to cook with older neighbours who would enjoy a freshly prepared meal and a friendly chat. If you or someone you know could benefit from Meal Makers, you can find out more by calling 0141 551 8118, by emailing us at mealmakers@thefoodtrain.co.uk, or by visiting our website www.thefoodtrain.co.uk.
1: सनी जी पॉजिटिव डेस्टिनेशंस प्रोजेक्ट आपके लिए रोजगार या ट्रेनिंग के मौके हासिल करने में मदद फराहम करता है। हम आपको CVs, कवर लेटर्स, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म्स लिखने में मदद कर सकते हैं। इंटरव्यू के एडवाइस देने के साथ साथ आपके ड्राइविंग लाइसेंस, PVG या पासपोर्ट के एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने में और कॉलेज या मजीद तालीम की कोर्सेज के लिए अप्लाई करने में भी मदद कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए sunnyg.org पर विजिट करें या 01414453741 पर कॉल करें। मुफ्त मुलाकात की बुकिंग के लिए javed@sunnyg.org पर ईमेल करें। सनी जी रेडियो आपको पॉजिटिव डेस्टिनेशंस तक पहुंचाने में आपकी मदद करता है।
2: You're listening to Sunny G 103.5 FM and currently listening to the Power Hour with me, Kyle Thompson. I have got Night Shift. It's by the Commodores, released in 1985. And this was made after Lionel Richie left. He was a member of the Commodores. And this was to commemorate both Marvin Gaye and Jackie Wilson, who were friends of the Commodores and recently passed away. So here, it's the Night Shift.